0: Vayas donde vayas, Uniradio va con vos.
1: अवतार बहुत हुंदे ने असी सचमुच भरोसा रखिए ता इसे तरह जिए एकता विच कहना।